ये स्वर था पायल दवे का और आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये गैर फिल्मी रचना। कार्यक्रम में अब सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम में अब सुनिए संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में अनिल पांडे का लिखा ओगार फिल्मी गीत। गायिका है शुभा मुदगल।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म हमराही की कव्वाली, आवाजें पन्ना डे, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की थी। इस कव्वाली को लिखा था शकील बानो भोपाली ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल, अभिजीत वगानी का संगीत है ये।

यह आवाजें अरमान मलिक और नीति मोहन की थी। आपने इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

यह आवाज आशा भोंसले की थी और रचना गुलजार साहब की थी। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाजों में मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये भक्ति गीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश साबरी बंधुओं की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं शोभा गुर्टू की आवाज में संत मीराबाई का ये भजन।

शोभा गुरु की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना और रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मीर तकी मीर का कलाम फनकार मेहदी हसन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी की कुछ गीत रचनाएं लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन से आवाजें किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर।

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है जाल।

ये स्वर लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म जाल के लिए थे। कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में है। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आज और कल।

0: धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है आज और कल। कृपया से दोबारा सुने। कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत कौर की आवाज में है, फिल्म का नाम है शगुन, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार खयाम साहब।

जगजीत कौर की आवाज में ये था फिल्म शगुन का गीत। आइए सुनते हैं एन दत्ता का संगीत, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। फिल्म का नाम है दीदी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना है।

0: कभी कभी।
1: ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था आंखें। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे रवि।
0: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
0: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
0: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: खत

कार्यक्रम का अगला गीत जयदेव के संगीत निर्देशन में है। गीत साहिर लुधियानवी का, आवाजें आशा भोंसले और साथियों की। ये फिल्म है मुझे जीने दो।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है वक्त और स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं।
1: मैंने देखा है कि फूलों

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म प्यासा से हमने लिया है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन सचिन देव बर्मन की है।

हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म प्यासा में सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रचना एन दत्ता की।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और सुरीले सफर के इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं सुनने को ये कार्यक्रम। चलिए तो सुरीला सफर शुरू करते हैं और आप मेरे साथ हैं, यकीनन है ना? आपने वादा किया था मुझसे कि इस सफर में आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, तो वादा निभाइएगा, भूलना नहीं है वादा। तो देखिए, अब जब सफर है जिंदगी का तो इसमें सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जीवन की कटु सच्चाइयां भी हैं और जीवन की सच्चाई भी है, जीवन की सत्यता भी है। इस सभी को हमें याद रखना होता है अपनी जिंदगी के इस सुरीले सफर में। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम में यानी सफर में हमने एक प्रयोग भी किया है, अब वो प्रयोग आपको अच्छा भी लगेगा। प्रयोग ये है कि हमने जो गीत आज चुने हैं हमारी इबारत के मुताबिक, है ना, तो उन सभी गीतों में एक खास आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वो आवाज किसकी है ये आपको हमें बताना होगा। तो चलिए आज की इबारत भी हम पढ़ देते हैं। जो हमारे दोस्त फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज इबारत क्या लिखी गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हमने लिखा है, दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ाओं में उलझी जिंदगी अक्सर खुद को भूल जाती है। ये मौसम, ये बहार, ये खूबसूरत शाम, ये तन्हाइयां सब बेकार लगने लगते हैं। ओरे मन, एक तरफ दुख दर्द है लेकिन दूसरी तरफ महबूब की पुकार भी तो है। महबूबा देखो, कोई तुम्हें पुकार रहा है इस तरह, तो उसे महसूस करो, रूह को सुकून मिलेगा यकीनन। एक बार, सिर्फ एक बार बस इस प्यार, इस प्रकृति को महसूस कर लो। बाहर भी है, प्यार भी है और दरिया की रवानगी भी। सुनो, प्यार और प्रकृति केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर का ही विस्तार है। जब हम बाहर प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को पहचान लो और हर पल को जी लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है। आइए शुरू करते हैं सुरीले सफर को कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे मदन मोहन। तो ये आवाज आपने पहचान ली होगी, किसकी आवाज है ये आपको बताना है। हमारे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हाँ मंदाकिनी जी, हम सुरीले सफर में हम भी आपके साथ हैं और स्वागत और नमस्कार करते हैं, और उन्होंने इस गीत को पहचान भी लिया था कि ये गीत कौन सा है। तो आप सभी इस सफर में हमारे साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता लिखती है कि बदलते हुए मंजर का नाम है जिंदगी, और दुख के कितने ही झोंके क्यों न आए, जीवन एक राग में बजने वाला साज नहीं है, इसके साथ सभी रंग हैं, खुशी के, गम के, मिलन के, जुदाई के। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन एक मुकम्मल इंद्रधनुष है, महबूब की पुकार से मन में सतरंगी बाहर खेल उठती है। जीवन का एक सच ये भी है कि दुख और असफलता में व्यक्ति या तो मजबूत बनकर उभरता है या फिर उसका तन जीता रहता है और मन मर जाता है। आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है सखी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आज हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। थोड़ा कयास लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए, ये कार्यक्रम में यही तो मजा है। हमारे कई श्रोता थोड़े से नाराज हैं कि भाई कैसे पता लगाएं, अगर हम ये गाना लिखते हैं तो पता चलता है कि कुछ और निकल आया है, तो क्या हो गया। ये एक मजाक होती है हार जीत तो, लेकिन कितना मजा आता है कि आपने उन गानों को चुना तो सही। हो सकता है आपकी जो च्वाइस है, आपकी जो सोच है, या जहां तक आपने सोचा शायद वो गीत हमने नहीं चुने हो, इसमें क्या हो गया। और अगर चुन भी लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपकी और हमारी पसंद एक हो जाती है। तो दिमाग की कसरत है ये, और जब आप दिमाग की कसरत करेंगे, जैसे गणित विषय पर हम करते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, तो कितना दिमागी कसरत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार की कसरत है इस कार्यक्रम में, और इस कसरत का आनंद लीजिए ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ा की गिरोहों में उलझी जिंदगी, कभी खुद को ही भूल जाती है, हर खुशी लगती है अजनबी, ये मौसम, ये बहार, ये शाम सुहानी, सब कुछ जैसे बेकार लगे, तन्हाई की चादर ओढ़े मन अपने ही भीतर हार लगे, ओरे मन सुन जरा वो पुकार, कहीं कोई तेरा करे इंतजार, दर्द के उस पार भी देख जरा कोई तुझसे ही करे प्यार, महबूबा की वो धीमी आहट हवा में घुलकर तुझे छूती है, रूह के सुने आंगन में आकर सुकून की ज्योति सी जलती है, एक बार तो महसूस कर ले इस प्यार, इस प्रकृति की सरगम को, बाहर भी है, दरिया भी है, धड़कन के इस आलम को, ये दुनिया बाहर जितनी सुंदर उतनी ही तेरे भीतर है, खुद से मिलना सीख ले मन, यही असली मुकद्दर है, हाँ सच है मन जीना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए, इस क्षणभंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए। और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले। बहुत सुंदर लिखा है आपने, भावों का ये सागर बहता है, सुरीला सफर के इस मंच पर हर दिल खुद से मिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जनाब आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं, और ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था इसमें गायक कलाकार कौन थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, ये आवाजें लता मंगेशकर और किन की थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान की बोल थी और मदन मोहन का संगीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर? आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफर का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उस अनमोल, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं, बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारत आपने पढ़ी थी उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए नैना वर्से रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है, और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफर सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया है। ये शाम की तन्हाइयां और माझी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार जरा फिर कह दो, देखो मौसम क्या बाहर है, आगे भी जाने ने तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एकाध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं, प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है। इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं, दुख दर्द, सागर, नैना, जिंदगी, बाहर, शाम, तन्हाई, मन, महबूबा, प्यार, प्रकृति, रूह, सुकून, दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुरीला सफर में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व, दुख और प्रेम, विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है। बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नजारे नहीं है बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं। मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरना जाता है, मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को जीवन का सार है पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाजों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज किसकी थी, और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज किसकी है।

शैलेन्द्र सिंह का शैलेन्द्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किनकी है और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की वो बहुत ही सुरीला गीत है और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिख दी है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर सुर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ए दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलती सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रही है। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उत्साह को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति। बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही, वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है। और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाजों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं, वो गीतकार की आवाज हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एक ही मात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज दी है। वो कौन सा गीत है, हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफर में शामिल नहीं किया है, आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं, लता मंगेशकर और एक और आवाज। फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता हैं, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एसडी बर्मन जी की आवाज में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज में, माहिरी मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सुरीला सफर कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50% देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका स्वागत है, आज के सफर में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनकी मधुर आवाज के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है, उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं, जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ, इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है, किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली, किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा, यही तो इस कार्यक्रम का मजा है ना, कि आपने क्या चुना, आपकी आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं, यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए, लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है ये, फिल्म का नाम है आजाद। और हाँ, हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं।

जी हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज है, हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई, इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारी महबूबा महबूबा, तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी, बताइएगा जरूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज दी है।

0: जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरकें, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और हां कभी कभी जो दुख और परेशानियां आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना, वो गीत याद आया हमको, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ अपनी आवाज दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का, महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे।
1: झुके जो तेरे नैना,
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज़ और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं, इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं। आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत की किसी, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पर रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शीरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूं। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना, आप लिख पाए वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा, तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

जी हाँ, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

जी, ये आवाज थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे साधना फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में अगला गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में कवि प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत तीसरी गली फिल्म से हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं अगला गीत दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं स्वर्ण सुंदरी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, भरत व्यास के बोल आदि नारायण राव ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में भागवत फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सरदार सिंह के संगीत।

फागुन फिल्म का यह गीत सुनने वाले हैं हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल हैं ओपी नैयर का है संगीत।

हम सुन रहे थे परवरिश फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडेकर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे गीत मालिक फिल्म से, शमशाद बेगम की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में बजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: बाजू।

हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से यह गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीत आई मिलन की बेला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आज का यह सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए,
0: हाँ
1: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
0: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
1: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग,
0: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके, इसके बारे में हम बात करेंगे।
0: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
1: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बिठाते हैं।
0: हा?
1: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ,
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से। चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना,
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं। पहले खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी, अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल, और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है। और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है, कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल

0: आते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है। लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसमें जब खाया, नहीं ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बचती जाती हैं। फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
1: हाँ, और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, सारी चीजें अगर अपने को चखने का मन भी है तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं चखने के हिसाब से। फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है, तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
0: हाँ, लेकिन वो भरते बहुत है। इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपने दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
1: हाँ, और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि खाना भी आमतौर पर शादियां शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेलीय भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते हो, कुछ दूसरी चीजें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकती हैं।
0: लेकिन अब शादी में गए हैं तो कोई सोचता भी नहीं इस तरह से। बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं। और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीजें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सा नहीं पसंद आया, वो प्लेट ऐसी आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली, तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित क्वांटिटी में आप यूज करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट
1: नहीं
0: होता है।
1: मेजबानों की बात को आपके ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट्स गिनकर ही पैसे लेते हैं कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं। तो एक तो एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं उसी समय,
0: ले सकते हैं
1: और गर्म भी मिलेगा।
0: बिल्कुल गर्म भी मिलेगा। और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुंचा दें तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कहना चाहिए। और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखे, इस चीज को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस भोजन को करने से, और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहां पर भी आप इन चीजों को दान कर सकते हैं।
1: जी, कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती है, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको खुद खाना लेके जाने की भी जरूरत नहीं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ उन्हें फोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि केटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं। मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही ले जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और छोड़ देते हैं, और
1: टेस्ट करने जितना ही लीजिए, तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए,
0: वो आप खाइए, और जो हमारा जो मेन्यू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए। हाँ। कि नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई सारी रोटी हाँ। रख दी, तो उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीजें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने
1: हाँ,
0: से।
1: तो ये मेजबानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीजें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने। ऐसा मत कीजिए, आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो, लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना, उन्हें 16 में भी निकालना है
0: जी। तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल्स हाँ। होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घुट पिया छोड़ दिया
1: हाँ।
0: या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए, जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं। तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रहे हैं कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए। कह रही है एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही ले। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना,
0: बिल्कुल मिलते हैं, सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा
1: हाँ।
0: और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था, खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के जमीन में बैठ के खाते थे उसमें
1: जो परोसा जाता था
0: वो पूछते थे कि और लेंगे तो हाँ। इस तरह से खाना थोड़ा बच जाता था।
1: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए, दो तीन रोटियां दे दी जाती थी जो कि बच जाती थी, पर ठीक है सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं करते थे। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिया कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट न खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि दो तीन दिन भूखे रहना चाहिए,
0: होता नहीं।
1: हाँ, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई,
0: तो अपने हिसाब से कहा है, लोग बड़ा इंतजार करते हैं,
1: भूख के कारण जरूरत से ज्यादा न खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें, प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं।
0: अरे बहुत
1: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर दो तीन तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको।
1: देखिए मंजरी जी, इतनी ज्यादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया।
0: फिलहाल
1: हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस गाना सुनते रहिए।

0: पूरी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मतलब एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद, सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के चाहे गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए तो खाना भी खा चुके हैं, लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
0: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूं वहां ब्रेकफास्ट लंच सभी सुविधाएं पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवे। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टॉल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी न हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
0: रस्में
1: होती उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए हैं,
0: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
1: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
0: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद
1: भी हो गई है।
0: शिकायत हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रोकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है, जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मिथेन गैस पैदा करता है।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में लें। खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है, जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे जरूर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं। पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे, फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग सुन लें गीत।
0: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जिसे चिकनकारी कहा जाता है। और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियां जो होती है बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन मंजरी जी दो बातें देखिए ऐसी आई हैं कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे नजर नहीं हट रही हमारी,
0: तो हम समझ रहे हैं तुम्हारा इशारा, पढ़ लो।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तली भुनी चीजों दूर रहे थे, खाली मिठाई ही वो खा रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और ये कहा कि
0: नेहा, हम साथियों को ये तो बता दे कि नेहा इस कमेंट को देख के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का कमेंट।
1: हाँ, ये बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े हुए साथी जैसा लग रहे हैं। और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ किया, हम तो कह रहे देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, अपने रिस्क पर खाइए, ऐसा कह सकते हैं,
0: छोड़िए कुछ जी। तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं।
1: हाँ, चिकन की साड़ियों पर।
0: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहां लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहां के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुर्री, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनपे कढ़ाई होती है। और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफी प्रसिद्ध है।
1: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएं हैं और ज्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन, सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो है थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है, क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है, क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, और यहाँ कई बार हमने खुद भी देखा है वहां पर कि घर घर में कढ़ाइयां होती, महिलाएं, बच्ची, लड़कियां बैठी, सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती है। और जहां तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है। और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
1: बिल्कुल, और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत, जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं।
0: और लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुर्री, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिधौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि बहुत सारी हैं। सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुर्री। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं, जिसे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है। इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी का करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
1: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से इसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है। अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है
0: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है,
1: आप पहचान सकते हैं।
0: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है जैसे जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियां भी, और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर इन सब पर भी ये वर्क मिलता है। तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है। तो हमारी सखियों में किसी न किसी को तो ये वर्क आता भी होगा।
1: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: नहीं गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियाँ क्यों लेती हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया ही नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है।
0: बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना के खा लेना,
1: कुछ तो गुस्सा कम हो,
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारा, ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी,
1: हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए हम खाएंगे आम की स्मूदी
0: बनाओ,
1: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे और खाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे।
0: चलो ठीक है।
1: तो एक आम पका हुआ लेना है इसके लिए काटकर, एक कप ठंडा दूध, दो चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और उसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
0: अच्छा, यानी तुम आज अकेले खाना है? तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तो हम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही। इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, एक कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटे, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें, और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, और नेहा को देखते दिखा दिखा के खाएं।
1: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। दो कप दूध, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, तीन चार चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए, जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं, तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए, और ठंडा होने पे इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी,
0: और फिलहाल सुनने वाले हैं
1: गाना।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा? की पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचाने, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य, आप परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बना रहता है।
0: जी, और हमारे साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहां विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। इन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे लिए।
1: बहुत अच्छी सी बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
0: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिक्कत के, वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहां भी अगर आपके पास समान रहते हैं सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
0: और हमारी और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहां विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहां शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
1: तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहां सामंजस्य होता है वहां रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ लेना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे। तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों का ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार करना

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय वमय रह नहीं गया है
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तरानी नए पुराने लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। आज के इस सफर में आपके साथ है आपकी साथी पूजा नरहानिया। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको पहला गीत फिल्म दोस्ताना से। शान की आवाज में विशाल डडनानी का लिखा, विशाल शेखर का संगीत पद किया गीत।

शान की आवाज में दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर मजरू सुल्तानपुरी के बोलों से सजा गीत।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: विचारा,
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
6: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अगला गीत कृष फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में। नासिर फराज का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत।

ऋत्विज फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में ये गीत आप सुन रहे थे। अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, एसजी परमन ने इसकी धुन बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए मोहरा फिल्म से इंदिवर का लिखा गीत। संगीत बनाया है विजू शाह ने।

मोहरा फिल्म से पंकज उदास और साधना सरगम के युगल स्वरों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कजरा मोहब्बत वाला ये खूबसूरत सा गीत किस्मत फिल्म से सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में। एसएच बिहारी के बोल हैं, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

किस्मत फिल्म से सुन रहे थे आप गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम के युगल स्वरों में, एच एस बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत।

अलका याग्निक और साथियों के स्वर में अगला गीत शकील आजमी का लिखा हुआ, रूप कुमार राठौर का संगीत पद किया, मदहोशी फिल्म से ये गीत सुनिए।

अलका याग्निक और साथियों के स्वर में मधुशी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शर्मिली से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। नीरज ने इस गीत को लिखा है, संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने।

0: रखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए।

0: शर्मीली फिल्म से गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब एक नया तराना सुनिए, दे दनादन फिल्म से।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: दे दनादन इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत लावारिस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के बोल है कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले,